0: उसको पकड़ मेका ठेकारा नहीं
1: कोई हाथ ना मराए इज इन सिडनी ट्रू और फॉल्स Pui Hākena Marae is in Sydney. True or false? False. Pui Hākena Marae is in Whangaroa.
2: Upoko Pakaru. Resources proudly sponsored by Waikato Tainui.
3: Hui hui a mai ki te waharoa. Te waharoa with him.